को शो के बाद जोसे क्यों खरा हो रही दुख दिखा जोसे कहाँ है छू हो रही आने दिखा ड्रॉप दे लिख नहीं तो खरा ते हो जुदा शो के बाद ड्रॉप दे छू ही नहीं तो ते हो जुदे मतो ड्रॉप तो ते ने छू ड्रॉप तो ऐसा हो मो सा शुम शुम टू के टू लाते तो छू हैं के मैं सु मार्टा इंसान दो ली शो पाक ला ला मंडे ला शालू मला मंडे ला छू चेसा जैसी दो ली